0: fucking on somebody's bitch. They keep bending karwa sach. Bane usse super head. Yeah, bane usse super head.
1: और कंपटीशन कर रहे हैं तो शर्म है तुम्हारे मुख्य पर ही गिर रहा हूँ पूरा महीना तुम्हें है ना और मैं जा रही हूँ कहीं पर मैं रोज काम करी तुम्हारी